खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद या कल का ताला। वो खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद या कल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी करते सबकी चाल। हो छोरा, हो छोरा।

इठलाती है बल खाती है तन का चंदन वो छलक छलक झलकाती है वो नैन द्वार से तन में आके मन में ज्वाला जगाती है वो चंद्रमुखी है वो मृगनैनी है वो चंद्रमुखी है वो मृगनैनी है वो रूपवती है वो मधुमती

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: इसका क्या करूं इसका क्या करूं, मार भी नहीं सकता।
1: बड़ा कमाल का डायलॉग लिखा।
2: जय जी, बोली बोली बोली।
1: सुबह से ना एक आलू बिका है ना ही बिका है आधा।

0: ไปसवारना सूरज ने खेची ने लावे ने चांद ने आख्या की रात जगावे दुनिया ना बद्दे ठेकाने ठेकाने मौजे मौज मा
1: गुजराती बोलो
0: खावामा
1: गुजराती
0: गरबामा
1: गुजराती
0: फरवामा
1: गुजराती
0: छापामा
1: गुजराती
0: किटली ना अड्डा पर
1: गुजराती गुजराती
0: सेवा भावी ने वाला पण
1: गुजराती।

I've got my sham on the rap with my brother Lijo George. नखरे करे ये तेरे तंग क्लब में लगा दे तूने आग ये दूर से ना आप मुझे तक मेरे